0: एनएम केटी रेडियो से
1: ये सदाई तुर्की है
2: अनवतनोला तुर्की आवाज रेडियोसे
3: एदो इफोनिटिस तुर्की
4: ओल्दी रेडियो ग्लास तुर्की
5: गिदर रेडियो अमरिय तुर्की
6: इनि अदला रेडियो स्वरा तुर्की
7: हिनी निदा या किस्वाहिली साउटी या तुर्की
8: एस्ते रेडियो वॉज द तुर्की
9: こちらはトルキエの声ラジオです。
10: ズボルはグラスオットナトルキエ。
6: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
11: イッツトルキエハンギアラジオや。
4: オールドラジオグラストルキエ。
12: トルキエウヌラジオソ。
4: ブラストルキエニンセシラジオソ。